सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया।

0: काटने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: आत्मबुद्धि प्रसाद से प्राप्त होने वाला शांति सुखी वो सच्चा ध्येय है, परंतु आध्यात्मिक सुखी यद्यपि इस प्रकार ऊंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता है, और इसलिए सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर तुमसे न ये कहता है कि कर्म करो और न ये कहता है कि उनका त्याग कर दो। ये तो सब प्रकृति की क्रीड़ा है और बंधन मन का धर्म है। इसलिए जो मनुष्य सम बुद्धि से अथवा सर्वभूतांतरात्मा होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। एकमात्र कर्म ही हमारा मार्ग प्रदर्शक होना चाहिए। हमारा कर्म निष्काम और पूरी तरह से सोचा समझा हुआ हो। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि प्रभुसत्ता किसे मिलेगी। यही पर्याप्त है कि हम पूर्ण सामर्थ्य के साथ सर्वोत्तम ढंग से कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। यही निष्प्रही धर्म है। जो कर्म हमारे मोक्ष अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य है, वही धर्म और वही शुभ कर्म है, और जो कर्म उसके प्रतिकूल हो, वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है कि हम कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य शब्दों का ही अधिक उपयोग करते हैं। आपके धर्म का सिद्धांत है, आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। सब कर्म एक से ही हैं। दोष केवल कर्ता की बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में। इसलिए बुद्धि को कम करके यदि सब कर्म किए जाएं, तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। धर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है कि कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुखमय है, अर्थात जन्म मरण के भव चक्र से आत्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिए मन निष्काम और विरक्त करना चाहिए, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहने वाले आत्मस्वरूपी नित्य परम ब्रह्म में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है। इस आत्मनिष्ठ स्थिति में ही सदा निमग्न रहना संन्यास धर्म का मुख्य तत्व है। संसार में कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्मफल उतनी शीघ्रता से नहीं मिलता जितनी शीघ्रता से कहा जाता है। हो सकता है इस कर्मफल से लाभान्वित हम हो पाएं या न हो पाएं, परंतु इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य नियम उन सभी श्रेष्ठ बातों का समुच्चय है जो अध्यात्म शास्त्र यथार्थ कर्म और निष्काम उपासना से परिपूर्ण जीवन से प्राप्त होती है। इस सार्वभौमिक नियम के अनुपालन से मानव संप्रेषित आदर्शों की प्राप्ति होती है। कर्मयोग इस संसार को निरर्थक नहीं मानता। कर्मयोग चाहता है कि आपके उद्देश्य स्वार्थपरता और भोग वासना से अछूते हों। यह व्यवहारिक वेदांत का सच्चा दृष्टिकोण और कुंजी है। कर्मयोग और कुछ नहीं वरन धर्म या भौतिक अथवा आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त करने की प्रेरक पद्धति है। हमें याद रखना चाहिए कि कर्मयोग हमारी पवित्र वंश परंपरा है जो उस अति प्राचीन स्मरणातीत काल से चली आ रही है, जब हम भारतीय यश और समृद्धि के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित थे।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कर्म के संबंध में विचार। वाचक स्वर

विनिध्यानी का एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

रिमन, समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में परमात्मा है और परमात्मा का घट घट में वास है, जगत में, आकाश में, अग्नि में, वायु में, जल में, इस धरा में,